नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर गमाश पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे

भंडारा, जस तू ते है तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला,

रे मन चित वह उदम जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जंत उपाए ताका रिजक आगे कर तरया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया।

या सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करया। उड़े उड़ आवे सह कुसा किस पाछ बचरे शरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करया। सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारावरया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तू।

जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुकत पाए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनंता तेरी अनेक करे हर पूजा जी तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावै मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर न कोई तू जोग जोग एको सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद

सबै तुम कावो आप हाथ दै मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन को आज संगरियै पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझे उबरिया है मरण काल का त्रास निवरिया है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जो करे हौ रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा

नमस्कार है काहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बाद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की

मैं मिलत देह धर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब धर, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत पेदा, जाको पेव ना पावत बेदा। ताकौ करपाहन अनुमानत, महामूढ़ काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पेन पेन तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जीते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार ते आए है, ताकि काल निकट नह आए है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट।

रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा।

को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने ओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं।

स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ, जिस दियां ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटुक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी। संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहे।

जाई, नित नित रख उर तारू, तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारू। सलोक महला पंजवां।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे, उथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे। पौ जल बिखम असगाहौ गुर शब्दी पार पाहे। जिनकौ लगी प्यास अमृत से खाहे। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे। बिरथा कोई न जाए जे आवै तुत आहे। सलोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जेहवा जप गुर नाओ। नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरतया दरगह पाइय ठाओ। कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वात दे। जग मह उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवा। रखे रखन हार आप उभारे अन गुर की पैरी पाए।

सुनिहार सत्रियाकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सच पवै तुर लेखै पौड़ी। नाम निरंजन अलख है, क्यों लखिया जाई। नाम निरंजन नाल है,

रविया सब ठाई गुरपुरे ते पाई हृदय दे दिखाई नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिय पाई।

जय कर कीरत आखिए करते का होए बिचारो तित कर गावो सोहेला शिव रहो सिरजन हारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहा नित नित जीअड़े संभालियन देखेगा देवन हार तेरे दान कीमत ना पवे तिस दाते कवन सुमार संबत सहा लिखे आ मिल कर पाओ तेल देहो सजन आसीसड़िया जो होवे साहिब स्यों मेल कर कर एहो पाहु चा सदने नित पवन सदन हारा सिमरी है नानक से दे आवन राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेसन एक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख।

निर्मल अनलोपमण चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंड ना तेरी आरती, अनहता शब्द आजंत पेरी रहाओ। सहस्तव नैन नन नैन है तोहे कहो, सहस मूर्त नन्ना एक तो ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस्तव गंध इव चलत मोही। सब मह ज्योत ज्योत है सोए, तिसद चानन सब मह चानन होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लो, पित मनो वंदनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल देह नानक सारंग कहो, होए जाते तेरे नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बो भरिया। मिल साधु खंडल खंडाहे, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मन हर लिव मंडल मंडाहे, कर साधु अंजलि पुन वडाहे। कर डंडौत पुन वडाहे, रहाओ सकत हर रस साधु।

नाम सुमाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ लड़ा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी

बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत कादू की भूखा नहीं राजै सुपन ज्यों पावको ईदन नहीं त्रापै संत का दुखी छुटे अकेला जो बुआड़ तेलो खेत माहे दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी साध मिथ्या कहत किरत निंदक का धुर ही पया नानक जो तिस पावै सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइय संत का दुखी ना मरै ना जीवाइय संत के दुखी की पूजे न आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख न त्रष्ट है कोय जैसा पावे तैसा कोई होए पया किरत न मेटै कोय नानक जाने सचा सोए सब घट तिसके करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तत करहो दिन रात तिसे त्या बहो सास विरास सब कश वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे भडभागी नानक जन से सलोक तज हो सियानत सुरजन हो हर सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखा हो नानक दुख परम पहु जाए अष्टपदी मानुख की टेक ब्रथी सब जान देवन को एक है भगवान जिसका दिया रहे आघाए बहुर न तृष्णा लागे आए मारे राख है एको आप मानुख कै किश नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परवे सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बेगन न लागे कोए उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मन रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लेह जियो नैनो पेखो ठाकुर का रंग साध संग बिनसै सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटै पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बडभागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोलै हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछानै एत उत कियो सोजी जानै नाम जन नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरप्रसाद आपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्ब रोग ते हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त मैं सोई निर्बान एक ऊपर जिस जन की आसा तिस की कटिय जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसा है न लागै दुख जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै सो संत सुहेला नहीं डोलावै जिस प्रभ अपना कृपा करै सो सेवक कहो किस ते डरै जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तत सब बूजिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नह किश जन मैं नह किश मरै आपन चले तो आप ही करै आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मैं आप अनक जुगत राचो थाप उथाप अविनाशी नाही किश खंड धारण धार रहो ब्रह्मांड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो बावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप भय निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करै बड पागै नाम जपत पावै बिसराम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किश करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सहज सुभाए होवै सो होए करणै हर पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओए सुख ने धान उन्हु बन आए आपस कौ आप दिनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक।

कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धर तवल अकाल सुने दीप लो पाताल सुने पोहे न सके काल नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का ना सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद सुने मुखशाला हनुमंद सुने जोग जुग तन भेद सुने शास्त्र सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का ना सुने सत संतोख ज्ञान सुने अठसठ का स्नान सुने पढ़ पढ़ पावह मान सुने लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश सुने सरा गुणा के गाह सुने सिख पीर पातशाह सुने अंधे पावह राहु सुने हाथ हुए सुगाहु नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश मन्ने की गत कही ना जाए जे को कह पिछे।

सो दर केहा सो घर केहा जित बै सर्व संभाले वाजे नाद अनेक शंका किते वावन हारे किते राग परी स्यो कहियन किते गावन हारे गावै तोनो पौन पानी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे गावै चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावै इंदिन दासन बैठे देवते आदर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावै मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रत्न पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावै जोधमा बल सूरा गावै खानी चारे गावै खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे सी तुदनु गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चित नावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पियो सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाथी कर कर जिनसी माया जिनु पाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस्ती वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह साहा पातशाहिब नानक रहन रजाई हुंदा संतोख शरम पत झोली ध्यान की करै बिभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश सै आदेश आद अनिल अनाथ अनाथ जुग जुग एक वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजै नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिच दवरा साध संयोग योग द्विकार चलावै लिखे आवै भाग आदेश सै आदेश आद अनिल अनाथ अनाथ जुग जुग एको वेस एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान संसारी भंडारी कलाए दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान होवे कै उन्ना नदर न आवै बहुता हो विडान आदेश सै आदेश आद अनिल अनाथ अनाथ जुग जुग एको वेस असन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर विखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सह आदेश आद अनिल अनाथ अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बहु लख होए लख होवै लख वीश लख लख गेड़ाया किया एक नाम जगदीश एतराहे पत पवड़ियां चढ़िया होए की

कै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसार।

केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते कते मंडल देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतिया काणी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नांत ज्ञान कांड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म कांड की बाणी रूप तिथै काढ़त घड़ी बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जी को कह पिछे पछताए तिथै घड़ी सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़ी सुरां सिद्धां की शुद्ध कर्म कांड की बाणी जोर तिथै और न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन महराम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना हो मरहि न ठाके जाहे जिन कह राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै खेलो करै अनंत सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जी को कथै तंत अनंत तिथै लो आकार जिव जी हुकुम तिवै तिवकार विखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाऊ खलागन तपताओ भांडा पाऊ अमृत तटाल घड़िया शब्द सच।

हैं, त्रिमान हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपांज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, निर्भूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अला हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरसीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अपूत हैं, अचूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबा हैं, अगा हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, भुजंग प्रयाचंद। नमो सर्वमानी समस्ती निदानी, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो वाद वादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, परपंगी परमाते समस्ति विपूते, कलंकं विनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो वस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अपुगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रे देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं स्नान, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी, अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता, अदो उर्ध अर्धं अगंग ओघ हर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अचेती अपेदी अनामंग कामं, समस्तो पराजी समस्तस्ततामं, तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं, तले हैं, अपीत हैं, अपे हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, अदेश हैं, अपेश हैं, भुजंग प्रयाचंद, अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने, नमस्तुं निर्नाते, नमस्तुं प्रमाते, नमस्तुं अगंजे, नमस्तुं अपंजे, नमस्तुं अकाले, नमस्तुं अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साध साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोक रोखे, नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परम तानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृष्णं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी, सदा सर्वदारिद सिद्धं निवासी, चरपड़ चंत्व प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मंग लख कर्मंग, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग पाने सर्वंग माने, सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण, सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता, सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग, सर्वंग काले सर्वंग पाले, रुवाल चंद त्व प्रसाद, आद रूप अनाद मूर्त, अजौन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार, सर्वपालक सर्व काल सर्व कोपन काल, जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिशाल, नाम ठाम न जा जाक रूप रंग न रेख, आद पुरख उदार मूर्त जौन आद शेख, देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग, जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग, नाम काम बहीन फेकता मुह न जाहे, सर्वमान सर्वत्र मान सदाय मान पता ही, कुमूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिरेक, देव पेव न जाने जी वेद और कतेव, रूप रंग न जात पासु जानी के जेव, तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन, चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुरथीन, लोक चौदह के बिखे जग जा पीजे जाप, आदिवनाद मूरत थाप्यो सब जिथाप, परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार, सर्व सुरच्यो सुयम भव गण भंजन हार,
कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहत भूत लख अपेश अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूपमी कनुष्ट तेक पुरख तूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंग ही न भंग ना तुम एक पुरख पारु सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जा कह नित भक्त नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मत पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार असन भंग उपमा नंगन भव प्रकाश निष्ठिन अनाश आजान बाहु साहन साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुभूत अंग अब अपांग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रनाड्य दंड भाड्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे पुजंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र जाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र जाने चाचरी चांद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अतिशय अदृश्य कृशय भगवती चंत्व प्रसाद कथते किया चिज देशय किया भिज भेषय किया गंज कर्म किया भंज भरमय किया भिज लोकै किया दित सुकै के अवतूत बरण के बेभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के असुख बरण के सर्वा भरण कि जगतंग कृति है कि छत्रंग छत्री है कि बर्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनूप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहीन है कि कै अधीन है कि रोजी रजा कै रहीम है रिहा कै कि पाक बेअब है कि गै भूल गै वह कि अफुल गुनाह है कि साहन सा है कि कारण पुनिंद है कि रोजी देहांत है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज्य के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र दिश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलिमय के परमंग फहिमय हे अकल अलम है कि साहिब कलम है कि हुस्नल वजू है तमामुल रुजू है हमेशल सलाम है सली खत्म दाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाइक यकीन है अनेकल तुरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उअंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिभंगी त्रिकामी त्रिभर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिपुक्त स्वरूप है छिज है अछूत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विपुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चांद
अपंग है अनंग है अपेक है अलेक है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है बंध है भगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अदिक है अलेख है अपेक है अटा है अगा है असंभ है अगम्ब है अनिल है अनाद है अनित्य है अनाद है अनित्य है अनाद है अनिल है अनाद है अनित्य है सुनित्य है अजात है अजाद है चरपट छंत्व प्रसाद सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वं ज्ञाता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंत्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निर्साकुं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंत्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमीसुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुस्नुल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुस्नुल जमाल है गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रनाश है बहस्तुल निवास है के सर्वुल गवन है हमीशुल रवन है तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परम परमीश हैं समस्तुल अदीश हैं आदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेक हैं जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो बेपूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मितो अपंग है मत पार चंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम हर भर अगंजु हर नर पर पंजु अनगन प्रणाम मुनमन सला हर नर अखंड भर नर अमंड वन पवनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल तल मुदाम अंशिज अंग असन भंग उपमा पार गत मित उदार जल तल अमंड दिश विश अपंड जल थल महंत दिश विश बेअंत अनपवनास त्रेतर तुरास आजान बाहु एक कैश दाहु ओंकाराद कथनी अनाद खल खंड के आल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंचिज गात आज जना बात अंचज गात अनरंज बात अनटुट पंडार अंडट अपार आडीठ धर्म अत टीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खल खंडन है महमंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वभारण है त्रित के तरण है जग के करण है मनमान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विषम पर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंडस हैं कलखंडस हैं परते पर हैं करुणा कर है जपा जप है तपा तप है कृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी त्रित है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है निर्नायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणालय है निरपनायक है सर्पायक है भव भंजन है अरगंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रया चंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संसात रूपे नमो परम तत्तं तत्तं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने
नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रिय अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वास आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी छंद अजय अलय अपय अभय अभू अजू अनाश अकाश अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल लेख अभेख अनाम काम गाह अटाह नाते प्रमाते अजुनि अमुनि नरागि नरंगि नरूपे नरेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे लेखे भुजंग प्रिया छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय गनी मे हरियं करियं करिमुल रहीम मे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंगंग विभूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंगंग विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तप प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिर कर युग जति के सूर सुरार्दन सुत सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मात को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के मातिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूत पवन के गौन को जात निवारे पारी भुजान के भूप भली बेदन्यावत शीस न जात विचारे इते भय तो कहा भय भूपत अंत को नांगे पाए पधारे जीत फिर सब दे दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेक भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पा श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम ने अनेक वसिख वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के फिख पावन आहार जति जत कार सब सो विचार हजार के दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है सुत सिपाह दुरंत दुबाह सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरिन मरोर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अविचार है सार की तार पछैया तूर्त देश मलिंद मुवासन माते गजान की मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सुबात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सबको सरनाय जाच कनेक सु एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भवेक भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सुब थप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन के वो पुंज कपेंगे सास मुह प्रसन्न फिर जग सत्र सदैव लोक चपेंगे मानव इंद्र इंद्र निराधव ज्योंतर लोक को राज करेंगे कूट स्नान गजा दिख दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विषण सचिपत अंत फसे जम फास भरेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फिर न देह करेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भक्त्या लगायो नाथ प्रियुरी सात समुन्द्र लोग गए ऊपर लोग गवायो बास की उपख्यान सुबैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बतायो साच कहूँ सुन रहे हो सबै जिन प्रेम की तिन ही प्रपायो काहू लै पाहन पूज कर सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो अरवाची दिशा मह काहू पछा कुशी सुनवायो खूब तान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को वतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्यो बाज बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण हुए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबू, आप हाथ दै मुहे बचाव। सुखी बसै मूरु परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मूर अच्छा निर कर दै करिय, सब बैरन कुआ संगरिय। पूर्ण हुए हमारी आशा, तूर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याहूं, जो बर चाहूं सो तुम से पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे वरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रच्छा। राख लिहो मेरा कनहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंदुष्टन के अंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बापतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल योगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जचन उपजायो। आदंते कै अवतारा, सुई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मुँह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उद करक करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिल दे तर सब हूँ। जेते बदन सिर सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद नील अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ कच भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक कै रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहि भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उतपुज कान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भय शंकर कैठा। शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो वार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रनकाता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्य है, ताके काल निकट नह है। रक्षा हुई ताही सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरे हो, ताके ताव तनक मैं हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई, दुष्ट छाह चव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारु कहा, दारिद दुष्ट दुख तेरा। कड़के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दै लेहो उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल विक्षक देह को हरता, दुष्ट दुख इनको क्षय करता। श्री अस्तो जब भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछक फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जो याहि सुरस न पावे, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई।
दुख दर्द भव निकट न तिन नर की रह हो जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई। संबत 17 सहस पुनी जय अर्ध सहस पुन तीन कही जय पाद्र सुदेष्टमी रवारा तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा सोइया। पाए गहे जब ते तुम रे तब ते कुमाक तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने। सिमृत शास्त्र वेद सब भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तुहे बखाने दोहरा सगल द्वार।

सर्व सह मनिया ये शरीरा मेरिया हर तुम महजूत रखी तातू जग मह आया हर जूत रखी तुद विच तातू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जीव पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी तातु जग मह आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख न व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभाप मिलिया करण कारण जोगो हे शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुरु प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक उस शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु स्यों चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत तरी हर बिनवर न देखो कोई हर बिनवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो वे संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई कह नानके नेत्र अंध से सतगुर मिले दिव दृष्ट होई हे सर्वन हो मेरे हो सच्चे सुनने नो पठाए सच्चे सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनहो सतबाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समानी सचलक विडानी ताकी गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनहु पवित्र होवहु सच सुन एनु पठाए हार जियो गुफांदर रख कह वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनीक न दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाव नव निद तिस्तांत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफांदर रख कह वाजा पवन बजाया एहु साचा सोहिला साचे कर गावहु गावहु ता सोहिला कर साचे जिथे सदा सच ते आवहे सचो ते आवहे जा तुद भावे गुरमुख जिना बुझावहे एहु सत्सवना का खसमै जिस बख्शे सो जन पावहे कह नानक सच सोहिला सचे कर गावहे अनंत सुनहु वड भागी हो।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहत तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर सगल सुमग

कच निकच महला पहला बड़ी वडियाई जा वडानाओ बड़ी वडियाई जा सतनियाओ बड़ी वडियाई जा ने चलथाओ बड़ी वडियाई जाने

अन्न ना खाया, साध गवाया, बहुत दुख पाया, दूजा पाया, बस करना पहरे अहनिस कह रहे, मोहन विगूता क्यों जागे गुरबिन सूता। पग उपे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख अंधा पग गवाही बिड़ना वै किश्ता न पाई, रह बेबाणी मणि मसाणी।

0: को सच्चा सोए। जित मुखसदा साला ही है पागण ती चार, नानक ते मुख उजले तत सच्चा दरबार।
1: बॉडी सबको आके अपना

गुरपार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव। श्लोक महला पंजवा। उदम करेंदिया जियो तू कमावंदिया।

नानक नाम न विसरो, एक घड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी, तेरा कीता होए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए।

पौधों को पुसख ही है रहाओ। सारो दिन डोलत बन महिया अजो न पेट अगही है। जन भगतन को कहो न मानो कि यो अपनो पई है। दुख सुख करत महा भ्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरयो इहो अवसर कत पई है। भ्रमत फिरत

परमद्भुतं परकृतपरं जदचिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृतत्मयं।

जस स्वस्थ सुकृत कृतं भावभूत भाव सुमभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभा दृष्ट परग्रहं जाद विद आचरणं ताज सकल दुःखकृत दुर्मति भज चक्रधर शरणं हर भगत निज

नानक शरण तुम्हारी हर जियो, रख लाज मुरार देव गंधारी, हर गुण गावे हो।

की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए तिरंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कार नाव नितावै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिट कीता इन्हां प्यारियां सुचारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हेत शीश दित्ते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्की केसां स्वासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी।

अवगुरु प्यारे साथियों जी, आप सारे ही स्वर्गवासी सरदार रघुवीर सिंह जी तिना दी याद दे विच मिल जुड़े बैठे हां। जिनी सुहासा दी पूंजी उस मालक प्रभु ने बख्शिश की है इस शरीर दे विच पो के इस संसार की यात्रा करके उस मालक प्रभु दे चरणा विच जा विराजे हां। दूजी पासे वेखिए उन्हां दे जीवन बारे विद्या विचारी ताप पर उपकारी परिवार तो पता लग्या है कि इलाके दे विच ओ पर उपकारी कार्ज किते हन जिहड़े कि संसार दे विच विचरण दे लई बहुत जरूरी हन। ताए मेरे मालक ने बाणी दे विच दर्शावना किता विद्या विचारी तां पर उपकारी। विद्या जिहड़ी है विद्वाना ने संसारी पक्षो इनू तेजा नेत्र आख्या गया है, क्योंकि दो अखां मनुख नूं उस मालक ने दित्ती हन। तीजी अख जिहड़ी है वह है विद्या विचारी तापर उकारी, गुरु प्रसाद दी विद्या पावे पढ़ पढ़ पावे मान। ये हर मनुख दे हिस्से दे विच नहीं आंदा है। जन पर उपकारी आई, जिहड़ा संसार नूं इहो जिहा सिक्ख्या दिंदे हन जिहड़ी कि संसार नूं लोड़ है, मनुख नूं लोड़ है, मनुख संसार दे विच विचर सकदा है, इस तों वड्डा होर कोई परोपकार नहीं हो सकता है। जिस मनुख दे कोल ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋੜ ਭਾਗੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਰੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀਵੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲੇਗਾ ਜੀ ਨਿਰਭੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰੇਵਾਲ ਅਨਾਦੀ ਮੇਹਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਲੇਗਾ ਅਭੈ ਪੁਰੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਧਨ ਦੌਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬੱਧੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ
जन पर उपकारी आए, परोपकार की है जिन्हों उस मालक प्रभु ने निवाजा है, वो ही परोपकारी बन सकते हैं। नहीं तो कई बार मनुख अपने जीवन दे विच अपना जीवन भी ठीक ढंग दे नाल जी नहीं सकता है। सो आओ, साढ़े तो ज्यादा आप सारिया नूं पता है उन्हां दा जीवन, उन्होंने जिहड़े परोपकार किए हैं। सो आओ, जिहड़े शब्द परिवार वालों हुक्म होए हैं वो शब्द आप जी ने सरवण कराण लगे हाँ। सो आओ, पहला शब्द थिर कर बैसो, हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। बीबी जी ने दर्शावना किया कि ये जिहड़े शब्द हैं वो बड़ी रूह दे नाल बड़े प्यार दे विच आके सरवण करदे सी, पढ़दे सी। सो कहण दा भाव ताई सतगुरां ने इहो जिहा रूहां नूं कह दिता है, सतगुरां ने वचन कह दिता, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले छडाई। इह लोक परलोक दे विच उह किधरे दूर नहीं है, गुरु का वचन बसै जी नाले। इह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे रखवारे। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले छडाई। ये जिहड़ा सारा प्रोग्राम लाइव संसार पर दे विच जा रहा है, जिन्हां जिन्हां ने इन्हां दे स्कूलां दे विच कालजां दे विच जां होर विद्या प्राप्त कीती हन, सारिआं दी अरदास है कि और साडी नहीं, ये सारी ही उस आत्मा प्रति अरदास कर रहे हैं लाइव दे राही। सो आओ, आपां वी सारे अपना कीमती समां कढ के पहुंचे हाँ। सो आओ, शब्द दे नाल जुड़ना करिए।